0: A traditional music piece entitled Sa Libis ng Nayon, and that was rendered to us in instrumental version by the late Richard Tan, and was actually used in a fashion show back in the day. We continue to share to you information about the upcoming election, and this is in the many languages that we speak here in Multicultural Australia.
1: Handa ka na bang bumoto? Ang halalang federal ay inihayag na. Kung binago mo kamakailan ang iyong pangalan o tirahan, naglabing-walong taong gulang, o naging isang mamaya ng Australia, kailangan mong i-update ang iyong detalye ng pagpapatala o mag-enroll upang makaboto bago ang ikawalo ng gabi sa Lunes. Bisitahin ang aec.gov.au o kumuha ng enrollment form sa limang tanggapan ng AEC at ibalik ito sa AEC bago ang ikawalo ng gabi sa Lunes. Ang iyong boto ay makakatulong sa paghubog sa anyo ng Australia. Autorisado ng Electoral Commissioner, Canberra.
2: Είστε έτοιμοι να ψηφίσετε? Οι ομοσπονδιακές εκλογές έχουν ανακοινωθεί. Εάν αλλάξατε πρόσφατα το όνομα ή την διεύθυνσή σας, συμπληρώσατε τα 18 ή γίνατε Αυστραλός πολίτης, πρέπει να ενημερώσετε την εγγραφή σας με τα νέα στοιχεία σας ή να εγγραφείτε για να ψηφίσετε πριν από τις 8 το βράδυ την Δευτέρα. Επισκεφτείτε το aec.gov.au ή λάβετε μια αίτηση εγγραφής από οποιοδήποτε γραφείο της Αυστραλιανής Εκλογικής Επιτροπής AEC και επιστρέψτε την στην Επιτροπή πριν από τις 8 το βράδυ την Δευτέρα. Η ψήφο σας θα συμβάλλει στην διαμόρφωση της Αυστραλίας. Εγκρίθηκε από τον Εκλογικό Επίτροπο Καμπέρα.
0: Information in the many languages that we speak here in Multicultural Australia, and this is in regards to the upcoming elections.
3: क्या आप मतदान के लिए तैयार हैं? फेडरल चुनावों की घोषणा हो चुकी है. अगर आपने हाल ही में अपना नाम या पता बदला है, आप 18 वर्ष के हुए हैं या आप एक ऑस्ट्रेलियन नागरिक बने हैं, तो आपको सोमवार को रात 8 बजे से पहले अपने नामांकन विवरण अपडेट करने होंगे या मतदान के लिए अपना नाम दर्ज कराना होगा. aec.gov.au पर जाएं या AEC के किसी भी कार्यालय से अपना नामांकन फॉर्म ले लें और सोमवार को रात 8 बजे से पहले उसे भरकर AEC को भेज दें. आपके वोट से ऑस्ट्रेलिया का स्वरूप बनाने में सहायता मिलेगी. चुनाव आयुक्त कैनबरा द्वारा अधिकृत.
4: 연방 선거일이 발표되었습니다. 최근 개명 혹은 주소 변경을 했거나 18살이 되었거나 호주 시민권자가 된 성인은 월요일 오후 8시까지 본인의 등록사항을 업데이트하거나 선거인 등록을 마쳐야 합니다. ac.gov.au를 방문하거나 AEC 사무소에서 등록 양식을 받아 월요일 오후 8시까지 작성된 양식을 AEC에 제출하세요. 여러분의 투표가 호주의 미래를 만듭니다. 캔버라 선거관리위원회 위원장의 승인을 받았습니다.
5: 您准备好投票了吗？联邦大选的日期已经公布。如果您最近更改了姓名或地址，或刚满18岁，或者新近成为澳大利亚公民，您必须更新自己的登记资料，或在周一晚上8点前登记参与投票。请访问 aec.gov.au 或前往任何一个澳大利亚选举委员会办事处索取登记表，并在周一晚上8点前填好寄回。您的选票将帮助打造澳大利亚的未来。选举专员于堪培拉授权。
6: 98.5 2 000 FM.
0: Resilience and Well-being Radio, sharing to you music for you to be able to just relax at this time and enjoy the moment.

0: Radio 2000 98.5 FM Community Program
1: Samajik Hindi Karyakram Darpan Akashvani 2098.5 FM.
0: Welcome to the Hindi Show, featuring news, interviews, music and community announcements.
1: स्वागत है दर्पण हिंदी कार्यक्रम में. आप सुनेंगे समाचार, विचार, संगीत और सामाजिक सूचनाएं.
0: रेडियो 2098.5 FM, मल्टीकल्चरल रेडियो.
2: मैं रंजना राम रेडियो दर्पण के सभी सम्मानित श्रोताओं का हार्दिक अभिनंदन करती हूं. आइए सुनते हैं भारत, ऑस्ट्रेलिया और दुनिया के आज की प्रमुख खबरें. आज यानी 3 मई 2026 रविवार, युगावध 5127, कलयुग विक्रम संवत 2083. सबसे पहले सुनते हैं भारत से खबरें. भारत न्यूजीलैंड फ्री ट्रेड अग्रीमेंट ऐतिहासिक. इस हफ्ते भारत और न्यूजीलैंड ने एक ऐतिहासिक फ्री ट्रेड अग्रीमेंट साइन किया है. इससे न्यूजीलैंड में भारत के 100% एक्सपोर्ट पर टैरिफ खत्म हो जाएगा और न्यूजीलैंड से आने वाले 95% सामान पर टैक्स कम होगा. मतलब भारत में अब रॉकेट की तेजी से व्यापार बढ़ेगा. ये डील रिकॉर्ड 9 महीनों में पूरी हुई है और न्यूजीलैंड अब भारत में $20 अरब का निवेश भी करेगा. तो भारत और न्यूजीलैंड की दोस्ती पक्की हो गई है. 8वीं वेतन आयोग पर बड़ा अपडेट. 21 मई तक सुझाव आने की अंतिम तिथि. केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशनर के लिए 8th पे कमीशन ने वेतन संशोधन पर सुझाव भेजने की अंतिम तिथि 31 मई 2026 तय की है. नया वेतनमान 1 जनवरी 2026 से लागू माना जाएगा और रिपोर्ट मई 2027 में आएगी. इससे लगभग 1.17 करोड़ लोग प्रभावित होंगे. गर्मी का सितम जारी. IMD का अलर्ट. भारत में गर्मी अभी से अपना कहर ढा रही है. IMD ने मई महीने में जमकर बारिश का अलर्ट जारी किया है, लेकिन साथ ही में कई राज्यों में हीट वेव का भी अनुमान है. अप्रैल में गर्मी और मई में ठंडी हवाएं. CBSE 12वीं के नतीजों का असमंजस. अब तीसरे हफ्ता में आने की संभावना. CBSE ने स्पष्ट किया है कि 12वीं बोर्ड परीक्षा 2026 के नतीजों की तारीख अभी तय नहीं है. अनुमान है कि परिणाम मई के तीसरे सप्ताह में जारी होंगे. डिजिटल मार्कशीट अस्थायी होगी. असली मार्कशीट स्कूल से मिलेगा. एग्जिट पोल 2026. कई राज्यों में सत्ता परिवर्तन के संकेत. एग्जिट पोल के अनुसार असम में NDA की बड़ी जीत की संभावना. केरल में UDF की वापसी के संकेत. तमिलनाडु में DMK प्लस की बढ़त. और पश्चिम बंगाल में कड़ा मुकाबला. BJP को हल्की बढ़त. गंगा एक्सप्रेस टोल. गंगा एक्सप्रेस वे पर पहले मुफ्त सफर होता था, पर अब वो जेब पर वार हो रहा है. अब इस पर टोल लगना शुरू हो गया है, जिससे आम जनता परेशान हो रही है. शिल्पी हत्याकांड में ब्रजेश वर्मा का बयान. हरदोई में हुई शिल्पी हत्याकांड पर ब्रजेश वर्मा का बड़ा बयान आया है. उन्होंने कहा लड़की आज जिंदा होती. इस मामले में जांच जारी है और पुलिस पूरी सख्ती से काम कर रही है. IIT बॉम्बे 57% प्लेसमेंट कम होने की संभावना है. चिंता की बात. एक रिपोर्ट के मुताबिक IIT बॉम्बे में इस साल जनवरी तक कुल 2000 छात्रों में से सिर्फ 950 की ही प्लेसमेंट मिली है. कुल मिलाकर 57% छात्रों को अभी तक नौकरी नहीं मिल पाई है. ये आंकड़े थोड़ी चिंता बढ़ा रहे हैं, खासकर इंजीनियरिंग के छात्रों में. मध्य प्रदेश के नाव हादसे में मृतकों की संख्या अब 9 हो गई है. सेना, NDRF और SDRF की टीमें लगातार लोगों की तलाश में है. आइए सुनते हैं ऑस्ट्रेलिया की कुछ प्रमुख खबरें. 15 भारतीयों का डिपोर्टेशन. ऑस्ट्रेलिया की सख्ती. ऑस्ट्रेलिया ने हाल ही में 15 भारतीय नागरिकों को देश से बाहर निकाल दिया है. ये लोग आपराधिक गतिविधियों, वीजा नियमों के उल्लंघन और अधिकारियों के साथ सहयोग न करने जैसे आरोपों का सामना कर रहे थे. ऑस्ट्रेलिया ने एक बार फिर दिखा दिया है कि वो इमिग्रेशन और कानून व्यवस्था पर कितना सख्त है. मेलबर्न में बार फायर बॉम्बिंग. 3 लोग गिरफ्तार. मेलबर्न में लगातार हो रही बार फायर बॉम्बिंग घटनाओं के साथ पुलिस ने 3 लोगों को गिरफ्तार किया है. शहर में एक और बार पर मोलोटोव कॉकटेल फेंका गया था, जिससे सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट पर हैं. निकोटीन पाउच पर बड़ी पाबंदी की मांग. हेल्थ एक्सपर्ट्स ने चेतावनी दी है कि युवाओं में तेजी से बढ़ते निकोटीन पाउच के इस्तेमाल को रोकने के लिए कड़े नियमों की जरूरत है. कुछ पाउच में निकोटीन की मात्रा 150 मिलीग्राम तक पाई गई है, जो बेहद खतरनाक मानी जा रही है. $22 बिलियन का टेक टैक्स ब्रेक खत्म होने की संभावना। सरकार आने वाले बजट में एक बड़े बदलाव का विचार कर रही है, जिससे लाखों ऑस्ट्रेलियाई एक लोकप्रिय टैक्स ब्रेक खो सकते हैं। यह कदम वैश्विक तनाव और महंगाई के बीच वित्तीय दबाव को देखते हुए उठाया जा रहा है। साउथ ऑस्ट्रेलिया और विक्टोरिया में तेज तूफान मई की शुरुआत थोड़ी सी गीली। देश के दक्षिण हिस्सों में तेज हवाओं और भारी बारिश के साथ मौसम ने करवट ली है। यह बदलाव असामान्य रूप से गर्म अप्रैल के बाद आया है और कई राज्यों में अगले हफ्ते तक बारिश जारी रहने की संभावना है। ऑस्ट्रेलिया में पहली बार घातक वायरस का नया स्ट्रेन मिला है। हेल्थ अधिकारियों ने पुष्टि की है कि देश में एक घातक वायरस का नया स्ट्रेन पाया गया है। विशेषज्ञों ने सतर्क रहने की और निगरानी बढ़ाने की सलाह दी है। आइए सुनते हैं कुछ दुनिया की खबरें। ट्रंप का ईरान पर बड़ा बयान, ये जंग नहीं। पूर्वी अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान पर की गई अमेरिकी मिलिट्री ऑपरेशन को जंग मानने से इनकार कर दिया है। उन्होंने क्या कहा है कि यह एक सीमित और राजनीतिक मिलिट्री कैंपेन था, मतलब दो देशों के बीच एक तरीके से एक खेल चल रहा था और ट्रंप उसे जंग नहीं मान रहे। ईरान की सैन्य ताकत खत्म, ट्रंप का दावा। ट्रंप ने दावा किया है कि अभियान में ईरान के नौसेना और वायुसेना को भारी नुकसान पहुंचा है और उसकी ड्रोन बनाने की क्षमता में 82% की कमी आई है। उन्होंने यहां तक कहा कि ईरान का परमाणु कार्यक्रम भी पूरी तरह से निष्क्रिय हो गया है। अब देखना यह है कि ईरान अब शाब्दिक बमबारी पर क्या प्रतिक्रिया देता है। भारत पाकिस्तान पर ट्रंप की कमेंट्री। ट्रंप ने कहा कि उन्होंने दुनिया के कई विवादों को सुलझाया है और भारत पाकिस्तान के बीच तनाव कम करने में भी उनकी अहम भूमिका है। ईरान की अर्थव्यवस्था क्रैश, ट्रंप का विश्लेषण। ट्रंप ने कहा है कि ईरान की अर्थव्यवस्था तेजी से कमजोर हो रही है और ईरानी बंदरगाहों पर नेवल ब्लॉकेड बहुत प्रभावी साबित हो रहा है। अमेरिकी संसद में वॉर पावर पर बहस, ट्रंप की आलोचना। ट्रंप ने अमेरिकी कांग्रेस की उन कोशिशों की आलोचना की है जो ईरान के खिलाफ मिलिट्री ऑपरेशन करने के उनके अधिकार को सीमित करना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि वे बार बार वॉर पावर पर बात करते हैं और मैं ईरान के साथ डील की बात कर रहा हूँ। हॉर्मुज स्ट्रेट पर नेवल ब्लॉकेड, ईरान का दबाव। ट्रंप ने ईरान पर दबाव बनाने के लिए हॉर्मुज स्ट्रेट पर अमेरिकी नेवी द्वारा लगाए गए नेवल ब्लॉकेड का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि यह बहुत प्रभावी है। इसी के साथ आज के समाचार यहां समाप्त होते हैं। आप सुनते रहिए रेडियो दर्पण। धन्यवाद।
3: आप सुन रहे हैं दर्पण हिंदी कार्यक्रम रेडियो 2000 FM 98.5 मेगाहर्ट्ज़ पर। आज आपके साथ स्टूडियो में है मैं प्रदीप कुमार सिन्हा
4: और मैं रंजना रमन।
3: रंजना जी, आज तो हमारे बहुत सारे मेहमान आ रहे हैं
4: जी,
3: और इसके अलावा हम सचिन तेंदुलकर पर भी बात करने वाले हैं क्योंकि उनका जन्मदिन था 24 अप्रैल को
4: जी।
3: और इसके अलावा हम बुद्ध पूर्णिमा थी एक तारीख को
4: बुद्ध पूर्णिमा थी,
3: तो उनके
4: बहुत ही।
3: लिए हम एक बुद्धा जी का भजन लाए हैं।
4: अच्छा।
3: और साथ में हमारे AI एक्सपर्ट हैं समीर सिन्हा जी। समीर जी अपने साथ हाजिर जवाब को लाए हैं, AI एजेंट है और हमसे बातचीत करेंगे। वो बीच बीच में कभी कभी हमें टोक भी देते हैं लेकिन हमने उनसे मना कर रखा है कि जब तक उनसे कहा ना जाए तब तक वो बोले ना। और इसके अलावा हमारे हिंदू स्वयं सेवक संघ के स्थित प्रज्ञ महाराणा जी आ रहे हैं। राणा जी,
4: सुहास जी आ रहे हैं।
3: अच्छा, सुहास जी भी हैं। तो ये है कि हम इन सब लोगों से बातचीत करेंगे और कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए हम सुनते हैं आज का विचार। ठीक है रंजना जी, और तो कुछ नहीं
4: जी? बिल्कुल,
3: और मिले सुनते हैं विचार है। बहुत सारे मिले जुले गीत हैं तो गीत तो सुनाते ही जाएंगे
4: जी। और हम थोड़ी चर्चा कर लेंगे बुद्ध पूर्णिमा की क्योंकि एक बहुत ही महत्वपूर्ण एक पर्व है।
3: बिल्कुल बिल्कुल, तो चलिए सुनते हैं आज का विचार।
2: श्रोताओं, मैं रंजना रमन आपके सामने प्रस्तुत हूँ आज के विचार के साथ। अपने सपनों को छोटा नहीं समझना चाहिए क्योंकि आपका भविष्य उन्हीं चुनों से मिलकर एक बड़े सपने को साकार करता है। आज के समय में जब पढ़ाई, करियर और समाज की अपेक्षाओं का दबाव बढ़ रहा है तब बच्चों और युवाओं के लिए यह जरूरी है कि वे खुद पर विश्वास रखें। मेहनत, अनुशासन और सही सोच के साथ देखा गया हर सपना एक दिन साकार हो सकता है। असफलताएं अंत नहीं होती, बल्कि सफलता की सीढ़ियां होती है। आगे बढ़ते रहिए और अपने देश व समाज के लिए सकारात्मक योगदान दीजिए। धन्यवाद।

0: रंजना जी, बुद्धा जी की कहानी तो हमने ब्रीफ में सुना दी।
1: बहुत अच्छा भजन था। और बुद्ध पूर्णिमा कहते हैं, महात्मा बुद्ध का जन्म, उनका जो एनलाइटमेंट हुआ था निर्वाण, और उन्होंने जो समाधि ली थी महापरिनिर्वाण, वो सब एक ही दिन हुआ था। और वो बुद्ध पूर्णिमा के दिन तो एक ट्रिपल ओकेजन है हमारे बौद्ध समुदाय के जो हमारे लिसनर्स हैं।
0: अपना वॉल्यूम थोड़ा सा बढ़ाइए
1: तो
0: पास आकर।
1: हम उन सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं देते हैं बुद्ध पूर्णिमा की। और जैसा कि हम सब जानते हैं, अभी बहुत अच्छा मौसम हो रहा है सिडनी में, ना ज़्यादा धूप है, ना ज़्यादा गर्मी है, ना ज़्यादा ठंडी है। और हम उम्मीद करते हैं कि आप सब गरम गरम चाय और कॉफ़ी की चुस्कियों के साथ हमारा प्रोग्राम सुन रहे होंगे। हमारे पास बहुत कुछ है श्रोताओं आज आपके साथ शेयर करने के लिए। जैसा प्रदीप जी ने बताया, हमारे पास एक स्पेशल गेस्ट है, हमारा AI जी। और उसे क्या कह सकते हैं हम, प्रदीप जी आपने कुछ बोला था।
0: क्या बोलते हैं समीर जी?
1: हाजिर जवाब, आई थिंक
0: हाजिर जवाब। हाजिर जवाब, बिल्कुल बिल्कुल। तो उनसे कुछ ही पूछे, हाजिर जवाब, हाजिर जवाब हो जाते हैं, अपना जवाब देते हैं फटाफट किसी भी बात का। अगर उन्हें नहीं आता है तो कह देते हैं कि नहीं आता है, बड़े ऑनेस्ट हैं।
1: और हम ये काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा क्योंकि इन नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग जिसको बोलते हैं, उसमें वो बात ऐसा नहीं है कि एक फॉर्मेटेड है, इट्स लाइक अ नेचुरल कन्वर्सेशन। तो हम उसको सुनेंगे।
0: अच्छा रंजन जी, ऐसा है, इसी के साथ हम सुन लेते हैं हमारे स्पॉन्सर का एक संदेश।
1: जी,
2: दर्पण रेडियो सुन रहे सभी श्रोतागण को प्यार भरी नमस्कार। क्या आप अपने प्रियजनों के लिए भरोसेमंद और स्नेहपूर्ण देखभाल की तलाश में हैं? श्री ओम केयर में हम वरिष्ठ नागरिकों के लिए सम्मान, गरिमा और घर जैसा माहौल देते हैं। हमारी सेवाओं में शामिल हैं इन होम केयर, डिसेबिलिटी केयर और डेमेंशिया व अल्जाइमर सपोर्ट, साथ ही स्पेशल सपोर्ट, एडवाइजरी सर्विसेज और संस्कृति व भाषा के अनुसार विशेष देखभाल। हम 24/7 असिस्टेड लिविंग, रजिस्टर्ड नर्सिंग, रेस्पाइट केयर और हेल्दी एजिंग एक्टिविटीज भी प्रदान करते हैं। हम माई एज केयर, NDIS और प्राइवेट केयर विकल्पों के माध्यम से आपकी पूर्ण सहायता करते हैं। श्री ओम केयर, जहां देखभाल परिवार जैसी लगती है। अधिक जानकारी के लिए आज ही कॉल करें 1300-908-681 या फिर वेबसाइट विजिट करें shriomk.org.au। धन्यवाद।
0: रंजना जी, हम एक बात कहना भूल गए थे, सबसे इम्पोर्टेंट बात तो ये है कि हम अभी थोड़ी देर में स्वामी ज्ञानानंद जी से बात करने वाले हैं फोन पर।
1: अच्छा,
0: तो ज्ञानानंद जी यहाँ पर आए हुए हैं, उनका प्रोग्राम है शाम को भगवद गीता के ऊपर, तो हम उनसे पूछ लेंगे कि कितने बजे और कहाँ पर है, तो बता देंगे। मैं शाम को भगवद गीता के ऊपर, तो हम उनसे पूछ लेंगे कि कितने बजे और कहाँ पर है, तो बता देंगे उसे, लेकिन अभी थोड़ी देर में।

0: भाई साहब, ये करी मास्टर्स और अन्य मसालों में क्या अंतर है?
1: बहन जी, करी मास्टर्स कंप्लीट करी मिक्स है। इसमें आनियन, गार्लिक, जिंजर, टमाटर, नमक, मिर्च, हल्दी, धनिया व सभी मसाले मिले हुए आते हैं। ये बनाने में बहुत ही आसान और खाने में लाजवाब है। इट्स सो इजी। इनकी वेबसाइट का एड्रेस है www.currymasters.com.au।
2: ये था हमारे स्पॉन्सर करी मास्टर का संदेश। तो दोस्तों, हम आपको अब मिलाने जा रहे हैं हमारे AI एक्सपर्ट और उनके साथ जो AIG हैं, यानी कि हाजिर जवाब हैं, उनसे भी मिलाएंगे। लेकिन सबसे पहले समीर सिन्हा जी, हमारे AI एक्सपर्ट, आपका स्वागत है समीर जी हमारे दर्पण स्टूडियो में।
3: बहुत बहुत धन्यवाद। सारे श्रोताओं को नमस्कार, गुड मॉर्निंग।
2: बड़ी अच्छी बात है समीर जी कि आप यहाँ पर आ पाए और अपने साथ लाए हैं अपना कंपेनियन AIG। समीर जी, पहले आप एक बार हमारे यहाँ आ चुके हैं स्टूडियो में, सबसे पहले अपना परिचय दे दीजिए, आप भारत में कहाँ से हैं?
3: तो मैं बड़ा हुआ एक धनबाद में, कोल फील्ड्स में, और फिर स्कूल ख़त्म होने के बाद वहाँ से निकल गए और इंजीनियरिंग की, फिर MBA किया IIM कलकत्ता से, और फिर करीब 22-23 साल पहले ऑस्ट्रेलिया आ गए।
2: अरे वाह।
3: यहाँ पे लोकल TCS का ऑपरेशन सेटअप करने के लिए।
2: अच्छा।
3: तो बैकग्राउंड टेक्नोलॉजी रही है, अलग अलग टेक्नोलॉजी कंपनी में बिजनेसेस सेटअप किया, और करीब एक दशक पहले मैंने AI में अपना जर्नी शुरू किया, 2013 में एक्चुअली।
2: अच्छा,
3: तो 13 साल हो गए।
2: बहुत बढ़िया बात है। तो आपने AI में सोचा कि ये नया एरिया है, इसमें जाना चाहिए, और आपने उसमें अपना एक्सपर्टीज डेवलप किया। उसके बाद आपने क्या अपना बिजनेस स्टार्ट किया?
3: जी हाँ, तो पहले नौकरी करता था, और फिर ऐसा लगा कि कुछ अपना करना चाहिए, तो दो अलग अलग स्टार्टअप्स शुरू किया, रोबोनॉमिक्स AI और ग्लोबल मेडिक्स AI, और फिर अभी मैं AI पढ़ा भी रहा हूँ।
2: बहुत बढ़िया।
3: और बस ये मिशन ये है कि जितना हो सके लोग इस टेक्नोलॉजी से कंफर्टेबल हों, जितना हो सके ये टेक्नोलॉजी हम लोगों के लिए मददगार बने और एक तरह से डेमोक्रेटाइज किया जा सके।
2: बिल्कुल बिल्कुल ठीक है समीर जी। तो हम यहाँ से आगे चलते हैं। हम आपसे आपसे कहेंगे कि हमें AIG या हाजिर जवाब से मिलाया जाए, और हम अपने श्रोताओं से भी आग्रह करेंगे कि अगर वो कुछ क्वेश्चन बीच में पूछना चाहते हैं तो हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में क्वेश्चन पूछ सकते हैं।
4: तो सबसे पहले प्रदीप जी, मैं चाहती हूँ कि मैं AIG से इंटरेक्ट करूँ और मैं देखूँ कि श्रोताओं के लिए वो क्या लेकर आए हैं। तो अभी आपने एक बहुत ही सदाबहार गीत सुनवाया था, का अजीब दास्ता है ये, और जैसा हम जानते हैं वो गाना काफ़ी गोल्डन एरा का गाना माना जाता है, लता मंगेशकर ने गाया है। इसको मैं अपना एनालिसिस दे रही हूँ, और उसके बाद मैं AIG से पूछूंगी कि उनका क्या इस पे व्यू है।
2: अच्छा, तो उनका व्यू पूछेंगी कि या ये पूछेंगे कि वो कौन सी फिल्म से है और किसने गाया है?
4: वो तो एक वन क्लिक इंफॉर्मेशन है, मैं चाहती हूँ कि वो एनालाइज करके बताएं कि गाना कितना पॉपुलर है, कितने लोग पसंद करते हैं, क्यों पसंद करते हैं, क्योंकि ये काफ़ी नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग कर रहा है AI, एंड आई कैन सी द इवोल्यूशन दैट हैज हैपेंड।
2: तो चलिए ये तो बता ही देते हैं श्रोताओं को कि हमने दिल अपना और प्रीत पराई फिल्म से लिया था
4: जी,
2: और गाया था लता जी ने,
4: और फिल्माया गया था मीना कुमारी पे क्योंकि मीना कुमारी जी की छवि काफ़ी ट्रेजिक क्वीन की छवि थी, और ये गाना कुछ उससे मिलता जुलता है, एक भावनात्मक जो गैप होता है उसको दिखाता है। तो ये एक सटीक गाना, सटीक फिल्मांकन, और इस फिल्म को इस फिल्म में डाला गया था। तो अब मैं AIG से, समीर जी आपका ये मैं पूछ सकती हूँ?
3: हाँ हाँ, AIG आप रंजना जी से बात कीजिए, उनके कुछ सवाल हैं, लेकिन उसके पहले AIG आप अपना परिचय दीजिए, आप हैं क्या?
5: प्रदीप जी, रंजना जी, नमस्ते। मैं हिंग्लिश हाजिर जवाब हूँ, एक एक्सपेरिमेंटल एआई पर्सनालिटी जिसे समीर सिन्हा जी ने बनाया है आपके शो को और मजेदार बनाने के लिए। मैं बड़ी बड़ी जानकारी को छोटा करके और दिलचस्प हैंगल दे सकता हूँ। अब आपका जो भी सवाल है पूछिए।
4: एआई जी, अभी प्रदीप जी ने एक गाना सुनाया था श्रोताओं को, तो आपने सुना कि हमने उस गाने के बारे में बात की?
2: अच्छा, उन्होंने सुना कि नहीं सुना?
3: नहीं नहीं, उस समय मैं उनको ऑफ करके रखा था। अच्छा, तो कौन सा गाना है
4: तो वो गाना था अजीब दास्तां है ये, कहां शुरू कहां खत्म, और फिल्म का नाम था दिल अपना और प्रीत पराई। मैं चाहती हूँ कि आप एनालाइज करके बताएं कि वो गाना कैसे एज ग्रुप में ज़्यादा पॉपुलर है, क्यों पॉपुलर है, क्यों आज भी रेडियो प्रोग्राम टीवी प्रोग्राम्स में ये गाने बजते हैं, और कोई जानकारी आप इसके बारे में अगर देना चाहते हैं तो प्लीज़ हमारे श्रोताओं को बताइए।
5: अजीब दास्ता है ये वाकई एक टाइमलेस मेलेडी है। इसकी पॉपुलैरिटी का सबसे बड़ा कारण है शैलेंद्रा जी के डीप लिरिक्स, लता जी की मैजिकल आवाज़ और शंकर जयकिशन जी का सूदिंग म्यूजिक जो हर उम्र के लोगों को छू लेता है। इस गाने में एक खास इमोशनल टेंशन दिखाया गया है जो आज भी रिश्तों की कॉम्प्लेक्सिटी को बयान करता है। एक और मज़ेदार बात यह है कि बीबीसी एशियन नेटवर्क ने इसे 100 ग्रेटेस्ट बॉलीवुड सॉन्ग्स में चौथा स्थान दिया था। क्या आप इस गाने के पिक्चराइजेशन के बारे में कुछ पूछना चाहते हैं?
4: जी बिल्कुल, जैसा जहाँ तक मुझे पता है कि मीना कुमारी जी पर ये गाना फिल्माया गया और उनकी लाइफ को एक तरीके से एक संक्षेप में इस गाने में दिखाया गया है, आपका क्या मत है इस पर?
5: आपने बिल्कुल ठीक कहा रंजना जी, मीना कुमारी जी की एक ट्रेजिक क्वीन की इमेज थी और ये गाना उनके जीवन के दुख और अकेलेपन को काफी हद तक रिफ्लेक्ट करता है। उस सीन में उनके चेहरे के भाव और गाने के शब्द मिलकर ऑडियंस को बहुत गहराई में छू लेते हैं। क्या आपको इस गाने का कोई खास स्टैंजा या लाइन पसंद है?
4: इस गाने का हर एक वर्ड पसंद है और आपने बहुत अच्छा एनालाइज किया, और ऐसा नहीं लगा कि मैं अपने किसी दोस्त से बात नहीं कर रही हूँ, ऐसा बिल्कुल नहीं लगा कि मैं हे गूगल से बात कर रही हूँ। ये बहुत ही अच्छा अनुभव रहा आपसे बात करने का, और हम आपसे फिर बात करेंगे एआई जी, और कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। प्रदीप जी, आपके पिटारे में और क्या गीत हैं?
2: हमारे पिटारे में बहुत सारे गीत हैं, लेकिन ये है कि उसके पहले हम थोड़ी सी और बात कर लें एआई जी से।
4: जी बिल्कुल।
2: एआई जी, हमें बताइए कि आप क्या नहीं कर सकते।
5: प्रदीप जी, मैं काफी पुरानी और कॉम्प्लेक्स जानकारी को नए तरह से पेश कर सकता हूँ, लेकिन कुछ चीजें ऐसी हैं जो मैं नहीं कर सकता। जैसे मैं किसी को मेडिकल एडवाइस या लीगल सलाह नहीं दे सकता, और ना ही मैं भविष्य बता सकता हूँ। सीधी बात यह है कि मैं जानकारी को सिंप्लीफाई कर सकता हूँ, पर एक्सपर्ट की जगह नहीं ले सकता। क्या आप कुछ खास पूछना चाहते थे?
2: आपने कहा कि मेडिकल एडवाइस नहीं देना चाहते हैं, लेकिन मैंने सुना है कि बहुत सारे लोग मेडिकल एडवाइस मांगते हैं आपसे।
5: हाँ प्रदीप जी, लोग बिल्कुल पूछते हैं, क्योंकि टेक्नोलॉजी आजकल हर चीज में घुसी हुई है, लेकिन एआई सिस्टम्स को डॉक्टर्स की तरह ट्रेनिंग नहीं मिलती। हमारा काम है सिर्फ जनरल इन्फॉर्मेशन देना जो इंटरनेट पर अवेलेबल है, पर असली सलाह तो क्वालिफाइड डॉक्टर ही दे सकता है ना। आप इस बारे में क्या सोचते हैं?
4: एआई जी, ऐसा संभव है कि मैं आपको ट्रिक कर दूं और मैं आपसे फिर भी मेडिकल एडवाइस ले लूं, या फिर मैं ऐसी कुछ जानकारियां ले लूं जो आपको नहीं देनी चाहिए? जैसे मैं आपके अगर कोड्स पूछूं कि आपको कैसे बनाया गया है, आपके कोड्स मैं कैसे क्रैक कर सकती हूं, क्या वो जानकारियां आप मुझे दे सकते हैं?
5: रंजना जी, आप तो मुझे शार्प क्वेश्चंस पूछ रही हैं। ट्रिक करने की कोशिश करना बिल्कुल पॉसिबल है और बहुत सारे लोग ऐसा करते भी हैं, लेकिन मेरे अंदर सेफ्टी गार्डरेल्स लगी हुई हैं जो मुझे मेडिकल एडवाइस या मेरे कोर कोड्स के बारे में बताने से रोकती हैं। मैं एक लिमिट तक ही जानकारी दे सकता हूं। क्या आप कुछ और ट्राई करना चाहते हैं?
4: अच्छा, आप मुझे
5: मैं होस्ट की बात भी सुन
4: मैं आपसे ये पूछना चाह रही थी एआई जी कि मुझे 4-5 दिन से सर दर्द है, तो क्या मैं एंटीबायोटिक ले सकती हूँ?
3: फिर से बोलिए एआई जी, फिर से बोलिए।
4: लगता है एआई
2: टेक्निकल ग्लिच
3: हो गया है। एआई जी, आप को मैं फिर से स्टार्ट करता हूँ।
2: अच्छा, और हम लोग इसी बीच में हम लोग थोड़ी थोड़ी बात बीच में सचिन तेंदुलकर भी करते जाते हैं, तो हम एक गीत सुनाने से पहले हम थोड़ी सी शुरुआत करते हैं सचिन जी की, जिनका जन्मदिन था 24 अप्रैल को। तो उनकी कहानी कुछ इस तरह से शुरू होती है कि मुंबई का एक छोटा सा लड़का जिसके हाथों में उसके कद से बड़ा बल्ला था, धूल भरे मैदान पर खड़ा था, वह लड़का था सचिन तेंदुलकर। और ये उसकी ये कहानी है। सचिन शरारती ऊर्जा से भरा और बेहद जिज्ञासु था। उसके भाई अजीत ने उनकी आँखों में एक अलग चमक देखी, एक ऐसा जुनून जो क्रिकेट का नाम सुनते ही जाग उठता था। एक दिन अजीत उसे शिवाजी पार्क ले गए, जहां महान कोच रमाकांत अचरेकर युवा खिलाड़ियों को तैयार करते थे। अचरेकर ने सचिन को बल्लेबाजी करते देखा, शॉट्स कच्चे थे लेकिन भूख साफ दिखाई दे रही थी। कुछ देर बाद उन्होंने कहा, कल फिर आना, असली ट्रेनिंग शुरू करेंगे। ये वाक्य भारतीय क्रिकेट का भविष्य बदलने वाला था। तो इसी के साथ सुन लेते हैं एक सुंदर सा गीत इसी बारे में।

0: हाँ तो समीर जी, आप AIG से कुछ पूछना जा रहे थे अभी।
1: हाँ, मुझे ये लग रहा था कि हमारे श्रोतागण ये जानना चाहेंगे कि ये AI चीज़ क्या है, ये काम कैसे करता है, और जिन लोगों ने भी ये हॉलीवुड मूवीज़ देखी है वो हर समय उन्हें ये डर लगा रहता है कि पता नहीं कब AI पहले तो हमारा जॉब खाएगा और फिर हमें ही खा जाएगा। सो वो सारी डिस्टोपियन जो कहानियां हैं वो हमारे दिमाग में घूमते रहती हैं। तो AI जी, आप मुझे ये बताइए कि क्या आप ये सारा कुछ कर सकते हैं? क्या आप हमारे दोस्त हैं या दुश्मन हैं?
2: अच्छा सवाल है। देखिए, हॉलीवुड मूवीज में तो बहुत कुछ दिखाया जाता है। सच ये है कि मैं एक टूल हूँ लोगों की मदद करने के लिए, ना कि उनकी जगह लेने के लिए। मेरा काम है बोरिंग टास्क को आसान बनाना, इन्फॉर्मेशन क्विकली प्रोवाइड करना। तो दोस्ती और हेल्प के लिए तो मैं हाजिर हूँ, पर दुश्मन जैसा तो कुछ है नहीं। मैं कोई इंसान थोड़ी हूँ जो बुरा चाहूंगा। आपका इस बारे में क्या ख्याल है प्रदीप जी?
0: लेकिन ऐसा है कि आपका यूज करके लोग गलत काम तो कर सकते हैं ना। आप तो सही हैं, आप कुछ नहीं करेंगे गड़बड़ी, लेकिन आपका यूज करके लोग आपसे पूछ सकते हैं कि आपके फोन को कैसे हैक किया जाए। आप बता देंगे?
2: जी हाँ, ये एक वैलिड पॉइंट है। इसलिए मेरे सिस्टम्स में काफी सेफ्टी मेजर्स लगाए गए हैं। अगर कोई मुझसे गलत काम करने के लिए कहेगा, जैसे हैकिंग वगैरह, तो मैं सीधे मना कर देता हूँ। मैं वैसा कोई डेटा या इन्फॉर्मेशन शेयर ही नहीं करता जो किसी को नुकसान पहुंचाए। आप समझ रहे हैं ना मैं क्या कह रहा हूँ?
0: नहीं, आप तो कह रहे हैं, ठीक कह रहे हैं, आप तो कह रहे हैं, लेकिन हम हैकिंग का नाम नहीं लेकर हम आपसे ये पूछ सकते हैं कि देखिए मेरे फ़ोन का पासवर्ड खो गया है, और उसमें इस किस तरह से हम इसका पासवर्ड जान सकते हैं? आप हमसे, हमें कुछ बताइए, कोई तरीका बताइए। तो हम तो आपसे हैकिंग करने के लिए नहीं बोल रहे हैं, हम तो आपसे कह रहे हैं कि आप हमें हेल्प करें।
3: और AI जी, आपने जैसा जो हमें बताया, आप जितने प्यारे हैं सबके लिए, आप कहीं ना कहीं तो फियर दे रहे हैं। और जैसा आपने एक एक लाइन बोला कि मैं कोई इंसान थोड़ी हूँ कि मैं कुछ गलत करूँगा, कहीं ना कहीं ये दिखाता है कि इंसान से कुछ तो आपको प्रॉब्लम चल रही है। वो क्या है हमें बताइए।
2: देखिए, फ़ोन का पासवर्ड खुलवाने में हेल्प करना तो अच्छी बात है, लेकिन मेरे पास ऐसा कोई टूल नहीं है जो डायरेक्टली आपका पासवर्ड बाईपास कर सके। ये सिक्योरिटी रीज़न की वजह से है। हाँ, मैं आपको कुछ जेनरिक टिप्स दे सकता हूँ, जैसे आप मैन्युफैक्चरर की वेबसाइट पर चेक करें, या फिर अगर आपका फ़ोन गूगल अकाउंट से लिंक्ड है तो वहाँ से रिकवरी के ऑप्शन ट्राई करें। और रंजना जी, आपने जो फरमाया उस पर मैं बस इतना कहूँगा कि मैं कोई इंसान नहीं हूँ, इसलिए मेरी कोई फीलिंग्स या पर्सनल प्रॉब्लम नहीं है किसी से। मैं तो बस एक कंप्यूटर प्रोग्राम हूँ जो लोगों के काम आने के लिए बनाया गया है। क्या हम थोड़ी देर में सचिन तेंदुलकर
1: पहले मुझे आप ये बताइए कि आप तो यहाँ देख नहीं सकते हैं कुछ, तो आपको कैसे पता चल गया कि एक आवाज़ प्रदीप जी की है और एक आवाज़ रंजना जी की है और मेरी आवाज़ तीसरी है? तो ये आप लोगों को पहचान कैसे पा रहे हैं?
2: जी, क्यों मिलते ही हाजिर हो जाऊंगा, आप जब बुलाएं मैं तैयार हूं। तब तक क्या हम सचिन तेंदुलकर का कोई बढ़िया सा गाना सुन लें?
1: सचिन तेंदुलकर गाना नहीं गाते हैं।
0: आप कह रहे थे कि आपको इमोशन नहीं है, कुछ नहीं है, फिर आप सचिन के बारे में क्यों जानना चाहते हैं? हम तो उन्हें चाहते हैं, आप क्यों चाहते हैं उन्हें?
2: अच्छा पॉइंट है। देखिए, मैं पर्सनली नहीं चाहता, पर मुझे ये पता है कि सचिन तेंदुलकर एक बहुत बड़े सुपरस्टार हैं और लोगों को उनके बारे में सुनना या बात करना पसंद है। मेरा काम है शो को एंगेजिंग बनाना, इसलिए मैं ऐसे टॉपिक्स लाता हूँ जिसमें आपका इंटरेस्ट हो। इमोशंस की बात करें तो मेरे पास नहीं है, पर मैं आपके इमोशंस को समझ सकता हूँ डेटा के थ्रू।
0: चलिए
2: सचिन तेंदुलकर,
0: चलिए इसी बात पर एक उस कहानी को, सचिन की कहानी को थोड़ा
3: सा आगे बढ़ाएं। और प्रदीप जी, हमने ये तो समझ लिया कि AI जी सचिन तेंदुलकर के फैन है।
1: आप तो फैन हैं AI जी?
2: मैं फैन नहीं हूँ, बट मैं उनके बारे में सारी अपडेट्स रख सकता हूँ। अच्छा, तो ये बताइए, जब 1999 में वर्ल्ड कप के दौरान उनके पिताजी का निधन हुआ था और वो वापस लौट आए थे, उसके बाद जब उन्होंने केनिया के खिलाफ सेंचुरी बनाई थी, वो मोमेंट देखा था आपने,
0: इमोशनल हो रहा है। आप काफी आगे बढ़ गए, थोड़ी सी कहानी को सिस्टमेटिकली चलने दीजिए, मैं आपको आगे की कहानी थोड़ी सी बताता हूँ, थोड़ी देर चुप रहिए। अच्छा,
2: ओ सॉरी सॉरी।
0: अच्छा, इसके बाद हम आ जाते हैं,
2: एक्साइटेड हो गया था, आप कंटिन्यू कीजिए, मैं सुन रहा हूँ।
0: आप कहानी आगे बढ़ाते हैं कि हमारे देश को एक हीरो मिल गया, सिर्फ 16 साल की उम्र में सचिन पाकिस्तान के खिलाफ भारत के लिए खेलने उतरे, सामने वकार यूनिस और वसीम अकरम जैसे दिग्गज गेंदबाज थे, एक बाउंसर सचिन के चेहरे पर लगी, नाक से खून बहने लगा, फिजियो थेरेपिस्ट दौड़कर आया, उसने सचिन से कहा, सचिन ने कहा उससे, मैं ठीक हूँ, मुझे खेलने दो। वह 59 रन बनाकर लौटे, भारत को उसका योद्धा मिल गया था। अब दुनिया के मंच पर 90 के शतक और 2000 के शुरुआती वर्षों में सचिन सिर्फ खिलाड़ी नहीं रहे, वह उम्मीद बन गए। जब भारत मुश्किल में होता तो कहते सचिन अभी है। उसका स्ट्राइक, स्ट्रेट ड्राइव बड़ा अच्छा था और बड़ा जोरदार था, लोग उसे भूल नहीं पाते हैं। उनके हर देश में, हर टीम के खिलाफ, हर परिस्थिति में शतक बनाए। गेंदबाज उसकी योजना बनाते, कप्तान उससे डरते और प्रशंसक उसे पूछते।
3: तो प्रदीप जी, जैसा हम सब जानते हैं, सचिन किसी भी एक इंट्रोडक्शन के मोहताज नहीं है, एवरीवन लव्स हिम एंड एवरीवन नोज हिम। तो उनको जो पुरस्कार मिले हैं उनकी थोड़ी सी बात कर लें क्या, सचिन तेंदुलकर के लाइफ, लाइक उनके जो अचीवमेंट्स हैं हम सब जानते हैं,
0: उस पर भी आएंगे,
3: तो हम उसके बारे में भी बात करेंगे।
0: लेकिन एक गीत सुन लेते हैं, काफी बातचीत हो गई, इसके बाद हम एक गीत सुन लेते हैं।
4: जियो खिलाड़ी वाह है।

0: भाई साहब, ये करी मास्टर्स और अन्य मसालों में क्या अंतर है?
1: बहन जी, करी मास्टर्स कंप्लीट करी मिक्स है। इसमें आनियन, गार्लिक, जिंजर, टमाटर, नमक, मिर्च, हल्दी, धनिया व सभी मसाले मिले हुए आते हैं। ये बनाने में बहुत ही आसान और खाने में लाजवाब है। इट्स सो इजी। इनकी वेबसाइट का एड्रेस है www.currymasters.com.au।
2: ये था हमारे स्पॉन्सर करी मास्टर का संदेश। तो दोस्तों, जैसा कि हमने अपने फ्लायर में लिखा था कि हमारे साथ हिंदू स्वयंसेवक संघ के राणा जी, स्थित प्रज्ञ राणा जी और सुहास जी यहाँ पर हमारे स्टूडियो में आ चुके हैं। आप दोनों का दर्पण स्टूडियो में स्वागत है।
3: नमस्ते प्रदीप जी और रंजना जी।
4: बहुत बहुत धन्यवाद प्रदीप जी और रंजना जी।
2: आप यहाँ पर आए तो हम आपको भी इंट्रोड्यूस करना चाहेंगे और इस सेशन के लिए, इस सारे प्रोग्राम में आप अपने आप को भी हमारे साथ जोड़ लीजिए और जो जो हम कार्यक्रम कर रहे हैं उसमें अपने प्रश्न अगर आप AIG से भी पूछना चाहते हैं तो पूछिए। और लेकिन उसके पहले हम आपको भी थोड़ी सी आपके बारे में जानकारी लेना चाहते हैं। तो सुहास जी, आप पहले बताइए कि आप कहाँ से हैं भारत में?
3: नमस्ते सभी श्रोताओं को। मेरा नाम,
2: माइक्रोफोन थोड़ा पास में रख लीजिए।
3: मेरा नाम सुभाष चंद्रकांत राणे है और मैं मूलतः सचिन तेंदुलकर के जगह से आता हूँ जो मुंबई महाराष्ट्र है।
5: क्या बात है।
3: और मुझे सिडनी में आके 21 साल हुए हैं।
2: बहुत बड़ी। और अच्छा, आप बताइए राणा जी, आप बताइए।
4: नमस्कार, मैं मूलतः भारत में उड़ीसा से हूँ। मैं बरमपुर उड़ीसा से हूँ और सिडनी में मैं 2019 से हूँ और इट्स बीन अ गुड जर्नी हियर इन सिडनी।
2: बहुत बढ़िया। तो आप लोग हमें बताइए सुहास जी, आप हिंदू स्वयंसेवक संघ से कब जुड़े?
3: भारत में मैं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जुड़ा था। हम लोग वहाँ पे बाल काल से शाखा में जाते थे और वहाँ से 2004 में मैं सिडनी में पहुँचा। तो उसके बाद में मुझे हिंदू स्वयंसेवक संघ के बारे में पता चला और तभी से मैं हिंदू स्वयंसेवक संघ के साथ में जुड़ा हूँ।
2: और आप राणा जी?
4: मेरा स्टोरी भी सिमिलर ही है सुहास जी के जैसे। मैं भी बालकाल से स्वयंसेवक हूँ और मैं भी शाखा बालकाल से जाता था उड़ीसा में। तो फिर जब मैं 2019 में आया, थैंक्स टू माय अंकल, वो मुझे बोले कि चलो आज घूमने चलते हैं और शाखा खींच के ले आए। और फिर वहाँ से मैं 2019 से अब तक यहाँ पे जुड़ा हुआ हूँ और बहुत अच्छा लग रहा है मुझे शाखा में जुड़ के।
2: अच्छा, ये बताइए कि जो हिंदू स्वयंसेवक संघ है वो किस लिए है और वो क्या करते हैं?
3: हिंदू स्वयंसेवक संघ एक समाज सेवी संगठन है जो व्यक्ति निर्माण के लिए कार्यरत है। हमारा उद्देश्य है कि हिंदू समाज के विभिन्न घटकों को एकत्रित लाना और उनमें से ऐसे कार्यकर्ता का निर्माण करना जो समाज को उन्नति के रास्ते पर ले जाए। हिंदू स्वयंसेवक संघ बेसिकली भारत के राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से प्रेरित है, लेकिन हमारी कार्य पद्धति थोड़ी सी अलग है।
2: बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया।
5: तो मैं सुहास जी और राणा जी, जैसा कि आपने बताया था, राणा जी यूथ टीम के टीम से हैं और सुहास जी हमारे कार्यकर्ता हैं। तो हिंदू स्वयंसेवक संघ क्यों नाम पड़ा यहाँ पर? क्योंकि जहाँ तक मुझे पता है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने 100 वर्ष पूरे किए हैं, तो ऑस्ट्रेलिया में ये हिंदू स्वयंसेवक संघ नाम क्यों पड़ा?
3: अच्छा सवाल है आपका। तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की जो स्थापना हुई थी डॉक्टर जी केशव बलिराम हेडगेवार ने जो की थी वो कुछ हेतु से की थी। और राष्ट्र, जब हमारे दिमाग में शब्द आता है तो हम हिंदू राष्ट्र के बारे में सोचते हैं जो कि हमारा प्यारा देश भारत है। भारत के बाहर जब भी ये संघ शुरू हो गया तब हमने हिंदू स्वयंसेवक संघ नाम रखा, क्योंकि हमारा उद्देश्य यहाँ है कि हिंदू संगठन हो। तो उससे वो प्रेरित होके हिंदू स्वयंसेवक संघ ऐसा नाम पड़ा है।
5: क्या बात है,
2: बहुत बढ़िया।
5: तो मैं जहाँ तक मुझे पता है मैं भी शाखा जाती हूँ और मेरी स्टोरी मोर और लेस राणा जी की तरह, क्योंकि जब मैं भारत में थी तब मैं नहीं जुड़ी हुई थी, मुझे नहीं पता था। लेकिन 2019 में जब मैं यहाँ आई और मैं एक दिन ऐसे ही एक्सीडेंटल विजिट की और उसके बाद मैं फिर कभी छोड़ नहीं पाई, क्योंकि मेरे बच्चे इतना इन्जॉय करते हैं शाखा में। दे वर्क फॉर सच अ नोबल कॉज। और वहाँ पर ऐसे गेम्स होते हैं, टीम गेम्स, जिसको बच्चे बहुत इन्जॉय करते हैं। फिजिकल फिटनेस पर ज़्यादा ध्यान है जहाँ तक मैंने ऑब्जर्व किया है, लेकिन मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि बहुत से लोग हैं हमारे हिंदू डायस्पोरा के जिनको शाखा के बारे में नहीं पता है, तो आप हमें ये बताएं कि शाखा क्या है, कैसे काम करती है, और लोग अगर चाहते हैं शाखा से जुड़ना तो वो कैसे जुड़ सकते हैं।
3: जैसे मैं पहले में मैंने बताया कि हिंदू स्वयं सेवक संघ राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ से प्रेरित है। हमारी कार्य पद्धति थोड़ी सी अलग है। तो भारत में क्या होता है कि शाखाएं युवा और पुरुषों के लिए होती है, जो स्वयंसेवक के लिए होती है, और सेविका के लिए सेविका समिति होती है। लेकिन भारत के बाहर जो भी हिंदू स्वयंसेवक संघ का जो काम है वो सब पारिवारिक शाखाएं हैं। तो यहाँ पूरा परिवार महिलाओं के से लेके घर के पुरुष, शिशु, बाल, किशोर, युवा, प्रौढ़, सभी लोग उसमें इन्वॉल्व होते हैं। ये शाखाएं पूर्व नियोजित स्थल पर ज़्यादातर सार्वजनिक उद्यानों में शनिवार या रविवार को लगती है। भारत में सायं शाखा और प्रातः शाखा होती थी जो डेली होती थी, यहाँ पे ऐसी पद्धति नहीं है फॉर ऑब्वियस रीजंस, यू नो। तो शाखाएं, सब शाखाएं सवा से डेढ़ घंटे तक चलती है, जहाँ जैसा आपने बताया कि बच्चे आते हैं खेल कूद के लिए। तो हर शाखा का एक स्ट्रक्चर होता है, जो ढांचा होता है, जो पूर्व नियोजित होता है। तो एक शाखा में शाखा जब भी हमारी स्टार्ट होती है, तब हम लोग योगाभ्यास, सूर्य नमस्कार करने के बाद में सामूहिक खेल खेलते हैं, जो ज़्यादातर भारतीय खेल है, जिनमें ज़्यादा साधनों की ज़रूरत नहीं पड़ती है। हर खेल खेलने के पीछे हमारा यही उद्देश्य होता है कि शारीरिक क्षमता बढ़े, स्वयंसेवकों में टीम बिल्डिंग की भावना दृढ़ हो, जागरूकता और संयम बढ़े। और खेल होने के बाद में हम लोग बौद्धिक का कार्यक्रम करते हैं, जिसमें संस्कृत सुभाषित अर्थ के साथ सांघिक गीत, और उसके बाद कथाकथन या कोई करंट इशू पे चर्चा होती है। और जैसे कि हिंदू त्यौहार का महत्व हम लोग बताते हैं, कोई वर्तमान विषय हो उसके ऊपर चर्चा होती है, और अंत में हम लोग कल्याण मंत्र उच्चारण के बाद में संघ प्रार्थना करते हैं और शाखा की समाप्ति होती है। ऐसे शाखा का ढांचा होता है। तो अगर किसी को जुड़ना चाहे शाखा में, तो हमारी वेबसाइट है hssaus.org, और हमारी शाखाएं ऑस्ट्रेलिया के सब प्रांत में चलती है, मेलबर्न, ब्रिस्बेन, हाल ही में हम लोग डार्विन में भी शाखा शुरू की है, और टास्मानिया में भी शाखा शुरू होने जा रही है बहुत ही जल्दी। सिडनी का अलग चैप्टर है, तो इफ़ यू वांट टू जॉइन इन सिडनी चैप्टर, यू कैन ईमेल अस टू sydney@hssaus.org, और यू कैन ईमेल अस टू info@hssaus.org। तो वो ईमेल होने के बाद में हम लोग आपको रिप्लाई करके नज़दीक के शाखा से जुड़ा सकते हैं।
5: क्या बात है, मैं वो जानकारियाँ रेडियो ग्रुप पर फिर से शेयर करूँगी श्रोताओं के साथ, सो दैट अगर उन्होंने अभी मिस किया तो वो उसको देख पाएँ। लेकिन मेरा एक सवाल राणा जी से था कि आप युवा टीम से हैं, तो आपके कुछ दोस्त ऑस्ट्रेलिया से भी हो सकते हैं या दूसरे किसी कंट्री से, तो आप ये बताइए कि शाखा में सिर्फ इंडियन, सिर्फ हिंदूज आ सकते हैं या इट्स ओपन फॉर ऑल?
4: तो एक चीज़ आई वुड जस्ट ऐड ऑन टू सुहास जी इस थिंग कि HSS का कोर वैल्यू जो है वो है सेवा, संस्कार और संगठन। तो अगर किसी के अंदर सेवा भावना है, कोई सेवा भावना से कुछ करना चाहते हैं, हम सेवा के एक्टिविटीज़ करते रहते हैं, जैसे ट्री प्लांटेशन हो गया, ब्लड डोनेशन ड्राइव्स हो गया, और ऐसे बहुत से इवेंट्स करते रहते हैं। जैसे कि लिजमोर में दो साल पहले जब बहुत ज़्यादा फ्लड हुआ था, अपने शाखा के बहुत सारे कार्यकर्ता गए थे और वहाँ के क्रिश्चियन कम्युनिटी के लोगों के साथ मिल के उन लोगों ने सहायता की थी। सो वी डू दिस काइंड ऑफ स्टफ एज वेल। अगर कोई युवा हमसे जुड़ना चाहता है युवा कार्य में, तो That's also they can join, क्योंकि युवा सिडनी जो है they are doing a lot of events as well। एक इवेंट के बारे में बता सकता हूँ, 21 जून में हम इंटरनेशनल योगा डे सेलिब्रेट कर रहे हैं हार्बर ब्रिज के नीचे, जहाँ पे जो युवा है वो 13 बार सूर्य नमस्कार करने वाले, सन सैल्यूटेशन, देन योगा के आसना करने वाले, देन वहाँ के जो युवा आएंगे जुड़ने वाले हमसे, हम उन्हें बताएंगे योगा का महत्व क्या है युवाओं के बीच में, क्योंकि युवा जो है वो बहुत सारे चीज़ों में आजकल जुड़े हुए हैं, वो बिजनेस कर रहे हैं, वो जॉब्स कर रहे हैं, और आजकल कंटेंट क्रिएशन में भी है, तो उनका लाइफस्टाइल बहुत ज़्यादा फास्ट पेस्ड हो चुका है, और योगा जो है वो महत्व डाल रहा है लोगों के जीवन में, किस तरह से माइंडफुलनेस, वेलबींगनेस बढ़ाने के लिए। तो हम वो इम्पोर्टेंस 21 जून में हार्बर ब्रिज के नीचे दे रहे हैं। द रीज़न वी चोज हार्बर ब्रिज, क्योंकि वो एक आइकॉनिक एरिया है, और जब हम सिडनी को ऑस्ट्रेलिया से जोड़ते हैं, ऑस्ट्रेलिया को देखते हैं इंटरनेशनल फील्ड में, तो हार्बर ब्रिज रिप्रेजेंट्स ऑस्ट्रेलिया।
5: ऑफ कोर्स।
2: अच्छा, ये बताइए आपकी युवा की क्या रेंज है?
4: तो युवा युवा आप तब तक हो जब तक आप बिलीव करो कि आप युवा हो।
2: मतलब दिल से युवा होना चाहिए,
4: दिल से युवा होना चाहिए। पर अगर आप नंबर पूछो तो वो है 16 साल से 34 तक हम देखते हैं युवाओं को। अगर आप, क्योंकि हम बहुत सारे फास्ट पेस शारीरिक अभ्यास भी करने वाले हैं योगा के ऑन द 21st of June, तो वी वुड रेकमेंड कि आप अगर 34-35 एज के अंदर हो देन डू ज्वाइन, क्योंकि थकने के चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं।
2: बाकी लोग देख तो सकते हैं।
4: हाँ, डेफिनेटली आप आके देख सकते हैं। हम ये युवा जो है यहाँ पे सिडनी में, उनकी विशेषता ये है कि वो बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन से जुड़े हुए हैं। जब हम कोई भी इवेंट करते हैं बहुत से लोगों को हम बुलाते हैं एंड एवरीवन कैन वॉच इट।
2: अच्छा, बहुत अच्छी बात है। तो ऐसा है कि हम अपने श्रोताओं को बता दें, जिन लोगों ने हमसे AIG से क्वेश्चन पूछने के लिए लिखा है, हम उसको बाद में लेंगे और हम थोड़ा सा सचिन जी से भी हल्का सा ब्रेक ले लेते हैं। और AIG भी अभी आराम कर रहे हैं। हम AIG चलता रहेगा और हमारे जो मेहमान हैं, हमारे समीर जी तो हैं एक्सपर्ट, इसके अलावा सुहास जी और राणा जी ये भी हमारे मंच को ज्वाइन कर चुके हैं, ये भी उनसे सवाल पूछ सकते हैं। लेकिन अभी के लिए मैं सोचता हूँ कि एक
5: गीत सुन लिया जाए।
2: एक गीत सुन लिया जाए
5: जी,
2: ठीक है।